0: 发的，मौसम विभाग की जानकारी की कहती है पंजाब की भी, सो थोड़ी जी ओ बारे भी इन्फॉर्मेशन जी ले लें, मैं लगता भी ये फिर इस तो बाद वापस मिलके ते बाकी दी गल्लां पता करते हैं।
1: मौसम विभाग ने अज भी पंजाब दे विच कई थावां ते भारी मीह पैण दी चेतावनी जारी कीती है। अज तो लैके 22 जुलाई तक इसे तरह दा मौसम रहेगा। अज तड़के तड़के चंडीगढ़, मोहाली, रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, होशियारपुर, गुरदासपुर, पठानकोट दे विच दरमियाने मीह दे नाल आसमान बिजली चमकण अते तेज हवावां चलण दी खबर मिली है। कल भी राजधानी चंडीगढ़ विच तड़के तड़के हल्की बूंदाबांदी हुई, पर पूरा दिन मौसम साफ रहा। मोहाली दे विच एयरपोर्ट रोड ते माड़ा मोटा मीह पैण दी खबर मिली है। बठिंडा एयरपोर्ट का इलाका सब तो वध गर्म रहा, जिथे वध तो वध तापमान 40.8 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया। पठानकोट, रूपनगर, होशियारपुर, लुधियाणा दे विच भी कई थावां ते कल मीह पैण दी जानकारी मिली है। हालांकि मीह पैण दे बावजूद हुम्मस भरी गर्मी का दौर भी लगातार जारी है, ते जे लगातार 3-4 दिन भारी मीह पैंदा है तां इस हुम्मस तों लोकां नूं राहत थोड़ी बहुत मिल सकती है, नहीं तां पड़दा अते हुम्मस भरी गर्मी दे नाल लोक मुड़को मुड़की हो रहे हन। असल स्थिति यह कि भारी मीह की चेतावनी के बावजूद कल ऐतवार नूं तां दरमियाना ते हल्का मीह ही पिया है। बिजली की मंग भी 16,500 मैगावाट तो टप गई है, यानी कि मीह की घाट लगातार बनी हुई है। गर्मी लगातार वध रही है ते बिजली की मंग भी वध रही है, पर दूसरे पासे देश के कई हिस्सों दे विच भारी मीह ने तबाही मचा रखी है। जम्मू कश्मीर के सरहदी जिलों पुंछ ते राजौरी दे विच कल ऐतवार नूं भारी मीह करके ढिगां डिग्गियां अते अचानक हड़ आया, बदल फटन वर्गी स्थिति बन गई। घट्टो घट 12 लोगों की जान चली गई। इन्हां घटनावां दे विच 7 तो वध लोक लापता दसे जा रहे हन। सुरक्षा एजेंसियां ने सांझी बचाव मुहिम शुरू कीती है, यानी कि इन्हां लोकां दी भाल शुरू हो चुकी है, हाले तक मिले नहीं। जम्मू कश्मीर दे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जिहड़े कल दिल्ली विच सन, उन्हां ने मीह करके विगड़े हालातां दे मद्देनजर अपना दौरा अद्ध विचाले छड्ड के जम्मू परतन दा फैसला लै लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी मीह ते हड़ प्रभावित जिलों की स्थिति का जायजा लिया अते तुरंत राहत पहुंचाउण दे हुक्म जारी कीते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उपराज्यपाल अते मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दे नाल गलबात कीती, स्थिति दी जानकारी लई ते हर मदद दा भरोसा दिता। उधर नागालैंड दे मोन जिले दे विच भी कल भारी मीह करके 8 लोकां दी जान चली गई। ढिगां डिगण दीआं घटनावां दे विच इह जानां गईआं हन। हुण तक 4 जणिआं दीआं देहां बरामद कर लईआं गईआं हन, 4 होर मलबे हेठां दबे होए हन। जम्मू कश्मीर दे विच अगले कुछ दिन भारी मीह की चेतावनी जारी करन तो बाद प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा दे नाल नाल माता वैष्णो देवी अते श्री शिवखोरी दीआं यात्रावां भी आरजी तौर ते मुलतवी कर दित्तियां गईआं हन। यात्रा मुड़ शुरू कीते जाण दी जानकारी अगे प्रशासन दे वल्लों दी जावेगी, उदों तक लोक इस इन्हां यात्रावां ते ना जाण। उत्तराखंड दे विच भी भारी मीह दीआं घटनावां करके लोकां दीआं जानां गईआं हन। कुल मिला के जम्मू कश्मीर, नागालैंड अते उत्तराखंड दे विच 23 लोकां दी जान चली गई है। हड़ अते लैंडस्लाइड दे नाल इन्हां सूबिआं दे विच तबाही मची हुई है। राजौरी दे विच 30 तों 50 तक गड्डियां भी पाणी दे विच वहि गईआं, कई पुल अते जनतक संपत्तियां दा नुकसान होया है। हरिद्वार विच बिजली डिगण करके 2 लोकां दी जान गई है ते उत्तराखंड दे 10 जिलिआं दे विच लाल चेतावनी जारी कीती गई है। इसरो दीआं सैटेलाइट तस्वीरां दे मुताबिक देश दे करीब 70% हिस्सिआं दे विच इस वक्त मानसून दे बदल छाए हुए हन। अगली 25 जुलाई तक उत्तर पूर्व अते पूर्व उत्तर भारत समेत देश दे 60% तों वध हिस्सिआं दे विच चंगा मीह पैण दी संभावना है। बिहार दे विच अगले 48 घंटे मानसून एक्टिव रहेगा। अज सूबे दे 10 जिलिआं दे विच भारी मीह दी संतरी चेतावनी जारी कीती गई है। पटना, लखीसराय ते खागड़िया दे विच तां सवेर तों मीह पै रिहा है। उत्तराखंड विच भारी मीह दीआं घटनावां दे चलदिआं नैनीताल अते पौड़ी समेत 10 जिलिआं दे विच अज स्कूलां च छुट्टी कर दित्ती गई है। देहरादून दे विच इक टापू च फसे 7 लोकां नूं कल सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। उत्तरकाशी विच भागीरथी नदी ओवरफ्लो है, यानी कि खतरे दे निशान तों उत्ते वह रही है। मौसम विभाग वल्लों हाल दी घड़ी देश वासियां नूं पहाड़ी सूबिआं दी यात्रा ना करन दी सलाह दित्ती गई है, तां कि तुसीं सुरक्षित रहो। पहाड़ी सूबे हिमाचल प्रदेश विच भी अज ते कल भारी मीह दी लाल चेतावनी जारी कीती गई है। प्रशासन ने लोकां नूं नदियां, नालियां अते जमीन खिसकण वाले प्रभावित इलाकियां तों दूर रहण, गैर जरूरी यात्रावां टालण अते मौसम विभाग दीआं चेतावनियां दी पालना करन लई अपील कीती है। भारी मीह दौरान फ्लैश फ्लड अते जमीन खिसकण दा खतरा भी जताया गया है। 21 जुलाई नूं चंबा, कांगड़ा, मंडी ते सिरमौर जिलों दे विच रैड अलर्ट है। हमीरपुर, ऊना, शिमला, सोलन अते कुल्लू दे विच अज पीली चेतावनी जारी की गई है। कांगड़ा, मंडी, सिरमौर अते चंबा जिला प्रशासन दे विच अज सारे सरकारी अते निजी स्कूलां दे विच छुट्टी ऐलान दित्ती गई है।

0: होम केयर प्रोवाइड कर दिया जिदे विच असी सरकार नु सीधा बिल कर दिया अंडर क्लाइंट डायरेक्टर होम केयर इनवाइसी प्रोग्राम इदे लई गवर्नमेंट फंडिंग हैगी आ ओदे लई तुहानू कोई भी क्वेश्चंस होन तुसी सानू फोन कर सकदे हो 8257600983 ते थैंक यू
1: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो हुण कनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया कनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल पंजाबी हिंदी उर्दू जां फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला फटा शोरूम सब दा माण सब दी चाहत अपनी सुपनमई कार खरीदने लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो जां फिर फोन कर लो 403-903-6757 मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स
2: कैलगरी वासियों की तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो खुद फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएसिस स्माइल मेडिकल सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी इत्थे सारेयां लई सुविधावां मौजूद हन अपॉइंटमेंट नहीं बनी कोई चक्कर ही नहीं सिद्धे चले आओ इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ भी देर शाम तक ता देर किस गल दी आज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696 ओएसिस स्माइल मेडिकल तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी 5876174696
3: कनाडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो सुपर वीजा लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस आरईएसपी दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो
4: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनर नाल भरिया है इना दा शोरूम अज ही इना दे शोरूम ते पुछो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट Empire. Phone number 403-510-1515. 2935 19th Street, North East Calgary.
5: नमस्कार सलाम याली मदद सस्रियाकाल वेरी गुड इवनिंग टू कैलगरी आप सबका स्वागत है हमारे प्रोग्राम आपकी आवाज में आप सुन रहे हैं रेडियो सुरसंगम ओनली ऑन 94.7 FM पर मैं हूं आपका होस्ट आपका दोस्त अमृत बराड़ आप सबका अपने इस प्रोग्राम में खैर मुद्दम करता हूं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होंगे व्यस्त होंगे और स्वस्थ होंगे सो दोस्तों कैलगरी में गर्मी का भाव बढ़ता हुआ तो प्लीज अपना ध्यान रखें और जितना अपने आप को सन से दूर रख सकते हैं मैं तो ये नहीं कहूंगा जितना मैं तो मानता हूं कि जितना आप सूरज की गर्मी को अपने अंदर अडेप्ट करें उतना बढ़िया है बिकॉज वी हार्डली गेट एनी डेज वेर यू गेट सो मच ऑफ यू नो सनलाइट सो डू एंजॉय इट गो आउटसाइड एंड एंजॉय विद योर फैमिली आज का प्रोग्राम मेरे साथ आपके लिए लेके आएंगे हमारे अपने शकील अहमद साहब जाना माना नाम जर्नलिज्म में कैलगरी के थ्रू हवाले से और हम लोग मिलकर आज बात करेंगे वाईवाईसी म्यूजिक अवार्ड्स 2026 की टीम से हमारे साथ दो नुमाइंदे जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे कि क्या होने वाला है इस साल जो कि डिफरेंट होगा और क्या क्या हो चुका है अभी तक की तैयारियों में तो मैं माइक देता हूं अपने साथी शकील अहमद साहब को और वो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे
6: जी शुक्रिया अमृत जी आपका बहुत बहुत और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही जो है स्पेशल गेस्ट यहाँ मौजूद हैं शैनन एम्ब्रोस जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं वाईवाईसी म्यूजिक अवार्ड्स की और जो कि इस साल सितंबर की 20 तारीख को ग्रे ईगल कैसिनो एंड रिजॉर्ट्स में जो है ना मुनक्किद होने जा रहा है ये इनका 11वां इवेंट है और वाईवाईसी म्यूजिक अवार्ड्स जो है वो एक

0: नियर यू बैंकेट हॉल के पास में जो है 2 अगस्त 2026 को, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ राकेश जी फोन पर जुड़े हैं। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम में।
1: जी आपने हमें टाइम दिया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। और रेडियो को इसको हम हमेशा सुनते हैं, बड़े आराम से सुनते हैं, आपकी आपकी आवाज सुनते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम आप लेके आते हो, तो इसीलिए हमें भी यही करना पड़ता है कि फिर आपके हिसाब से हमें तो इस बार हमारा यही रीजन हुआ कि हमें फिर डिफिकल्टी में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं हमारे नीरज श्रीधर जी,
0: जी
1: जिनको हमने बहुत सुना है
0: जी,
1: और जिन्होंने अपने आप का कहते हैं ना कि हर एक गाने को उन्होंने खुद ही उन्होंने लोहा मनवाया हुआ है उनका।
0: बिल्कुल सर,
1: चाहे वो मैं बोलूं कि पॉप म्यूजिक में हो, बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग में हो, या कोई भी आइटम सॉन्ग्स में सिंगिंग का करना हो
0: जी,
1: तो उनके बहुत सारे हिट्स हैं, जैसे आप तो जानो काफी हमसे भी ज्यादा जानते हैं
0: जी,
1: तो उनको लाने का हमारी खुद कह रहे हैं कि खुशकिस्मती है
0: जी,
1: उनका आने का प्रोग्राम बन रहा है
0: जी,
1: तो इनको हम यहाँ पे पूरे कनाडा टूर के लिए लेके आए हैं
0: जी।
1: और कैलगरी में हमारा ये होगा संडे अगस्त सेकंड लॉन्ग वीकेंड संडे को
0: जी,
1: ये जो टीरा बैंक कॉन्सर्ट सेंटर बोलते हैं इनको, ये बोल रहे हैं
0: जी,
1: तो वहाँ पे हम लोग इनको लेके आ रहे हैं। वो ब्यूटीफुल हॉल है, न्यूली रेनोवेटेड किया हुआ है
0: जी,
1: तो आपके साथ सबके साथ मेल होगा उस दिन
0: जी,
1: और वो भी बहुत एक्साइटेड है, उनके फुल वो कोशिश कर रहे हैं कि उनका फुल बैंड के साथ वो यहाँ परफॉर्म करेंगे।
0: बिल्कुल सर, दोस्तों बॉम्बे वाइकिंग्स वर नोन फॉर देयर अमेजिंग, जो उन्होंने ट्विस्ट करे गानों को, दोबारा से रीमिक्स किया और उसकी एक अपनी पॉप कल्चर बनाया। वो चली उनका एक बहुत ही फेमस गाना है, छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का, मतलब कि जिस तरह से उन्होंने रीमिक्स कल्चर को इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर, तो वो एक मानने वाली चीज है। और लोग आज भी ओरिजिनल गाने के साथ साथ अगर कोई रीमेक सुनता है तो वो बॉम्बे वाइकिंग्स ही है, और उनके ही चलाए हुए जो गाने हैं वो सुने जाते हैं इस समय पूरे वर्ल्ड में। तो नीरज श्रीधर जी आ रहे हैं कैलगरी के अंदर, अपना 2 अगस्त को ये प्रोग्राम होने जा रहा है, तो टिकटें सेल पर हैं, आप जरूर जाके टिकट्स लें और इस अमेजिंग इवेंट का हिस्सा बने। राकेश जी और कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे, लोग कहाँ से टिकट्स ले सकते हैं?
1: बिल्कुल जी, आपको ये शो पास में ऑनलाइन पे जाके आप टिकट ले सकते हैं। अभी इस समय में प्री सेल टिकट चल रही है, जिसके ऊपर आपको 15% ऑफ मिल रहा है
0: जी,
1: जिसका कोड है बॉम्बे।
0: अच्छा,
1: ये तो टिकट्स रहे जो अभी उस समय में वहाँ पे अवेलेबल है
0: जी।
1: अगर आपको कुछ ऐसी टिकट चाहिए, जैसे ग्रुप में कुछ टिकट चाहिए, आप मुझे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं
0: जी।
1: मेरा फोन नंबर है 4038364016, तो बाकी आप अमरीत जी से भी बात कर सकते हैं, तो उनसे उनके थ्रू भी टिकट मिल सकती है। और मैं ये बोलूंगा कि बहुत धमाकेदार इवेंट होने वाला है, डोंट मिस इट। लॉन्ग वीकेंड है, आपने एंजॉय करना है अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और ये पार्टी मतलब पूरी रात चलेगी, कोशिश हमारी यही रहेगी जितनी देर तक हम कर पाए। और मैं ये बोलूंगा कि द अमेजिंग शो होगा, क्योंकि जो नीरज है वो बहुत एनर्जेटिक है और हर डांस में आपको मालूम ही है कि जैसे अभी रिसेंटली धुरंधर में उनका म्यूजिक आया चॉकलेट, जैसे इसमें कॉकटेल 2 जो हम लोग बोलते हैं, वो नई रीसेंट मूवी अभी होके हटी है
0: जी,
1: जिसमें शाहिद कपूर जी है, उनमें फिर वापस उनका सॉन्ग लिया गया, तो उनके काफी है, वेलकम, गोलमाल, धमाल, अब मैं नाम लेता जाऊंगा तो मतलब नाम ही खत्म नहीं होते, तो हिट बहुत है। आपके साथ समय बताएंगे वो तो ना, हम बोलते हैं ना वो पुरा एक गाना है नचांगे सारी रात
0: जी,
1: हम लोग मतलब वो सारे गानों का नाम मतलब मैं भूल जाता हूँ कई बार
0: जी,
1: हिट्स इतने ज्यादा हैं कि मैं भी याद नहीं कर पाता इतने
0: जी, बिल्कुल।
1: तो उस रात को बहुत कुछ मिलेगा, आप अपनी फैमिली के साथ आइए, सिक्योरिटी बहुत अच्छे से हमने सेट की है, अरेंजमेंट बहुत अच्छे से, बिल्कुल थिएटर वाला सेटअप बनाया है, तो बस आप लोगों की सबकी वेट होगी और नीरज जी आपकी बहुत आपको फुल एंटरटेनमेंट करेंगे।
0: क्या बात है राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए प्रोग्राम में, तो आपसे जल्दी मुलाकात होती है।
1: बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया दोबारा।
0: नो वरी सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर,
1: थैंक यू।

0: सो दोस्तों, नीरज श्रेयदर जी आ रहे हैं कैलगरी के अंदर, तो आप जरूर पहुंचे इस इवेंट को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और हम लोग आज थोड़ी डिस्कस करेंगे जो रिसेंट चीजें चल रही हैं वर्ल्ड के अंदर शकील अहमद साहब के साथ। तो जुड़े रहिए, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: वीरे, मैं तेनू लभदा फिरदा कई दिनां तों, तेरा फोन भी नहीं लगा। जरूरी काम सी तेरे नाल कोई।
2: लपना कित्थों भरावा, मैं तां इंडिया गया सी।
1: कीता ना ओही काम, दस के जांदा तां मैं इंडिया तों पैसे मंगाउणे सी।
2: लै दस, बच्चियां वाली गल करदा तूं। इन्ने साल हो गए तेनू कैलगरी रहिंदिआं मैनू लभण नालों फोन करना सी। अकाल फॉरन एक्सचेंज दे रेशम सिंह सिद्धू नूं वधिया रेट ते बेस्ट सर्विस लई कॉल कर 403-607-4408।
1: इंडिया नूं डालर भेजणे होण जां रुपईए मंगाउणे रेशम सिद्धू नाल रेट जरूर चेक करो। तसल्ली बख्श ते तेज सर्विस, लंबे समय तो भरोसे योग सेवावां लई जाने जांदे हन। अकाल फॉरन एक्सचेंज दे रेशम सिद्धू 403-607-4208। अकाल फॉरन एक्सचेंज। हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो। किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट, सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे। साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिलकुल परफेक्ट आउण। ए सब कुछ बिलकुल वाजिब प्राइस ते। पासपोर्ट तो लैके हेडशॉट अते परिवार पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करते हां। पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो। तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060, 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार।
0: जी दोस्तों, एक बार फिर हम आपके साथ हाजिर हैं वक्फे के बाद। आज हम बात करेंगे दुनिया के स्पोर्ट्स के हवाले से सबसे बड़े इवेंट की, जो कि संडे के दिन इख्तिताम पजीर हुआ न्यूयॉर्क के अंदर, और न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम के अंदर एक तारीख रकम की गई। और स्पेन की टीम ने बहुत शानदार मुकाबले के बाद जो अर्जेंटीना की जो टॉप नॉच टीम थी उसको बेदस्त पा करके ये ट्रॉफी या वर्ल्ड कप सॉकर का जो है ना उनके हाथों से छीन लिया। जैसा कि आपके इल्म है कि ये जो दिफाई चैंपियन था, डिफेंडिंग चैंपियन था अर्जेंटीना, और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही इस सारे टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से जिस दिन उनको अच्छा खेलना चाहिए था शायद वो उस दिन बहुत दबाव में थे। और स्पेन की इतनी अच्छी टीम के मुकाबले में, जो कि अगर मुवाजना किया जाए तो मेसी की मौजूदगी के बावजूद इस कदर भारी भरकम नहीं थी, लेकिन जो शानदार खेल स्पेन की टीम ने पेश किया वो वाकई में देखने के काबिल था। और जो है उन्होंने 2-1 से मुकाबला जीत लिया। ये वर्ल्ड कप की तारीख के 1-0 से मुकाबला जीत लिया। करेक्शन करने का शुक्रिया। और ये स्पेन के लिए बहुत जबरदस्त कामयाबी है कि उन्होंने पहली दफा दूसरी टाइम जो है ये वर्ल्ड कप जीता है। और जो उनकी टीम थी उसमें बेहतरीन सलाहियतों के साथ उन्होंने जो है ना फाइनल के अंदर उतरी, और उन्होंने पहले मिनट से ही जो है ना अर्जेंटीना की जो टीम को बहुत जो है ना दबाव में रखा और आखिर वक्त तक जो है उनको पनपने नहीं दिया। और सारी दुनिया ही जानती थी कि ये जो अर्जेंटीना की टीम है अगर इसको जरा सा भी गैप मिलता है तो ये वो टीम है जो 5 मिनट में 2 गोल करने की सलाहियत रखती थी, और इसने किया भी, ये करके भी दिखाया मुख्तलिफ मैचों
3: में। 2 मैचेस में तो लास्ट के 7-8 मिनट में इन्होंने गोल लगाया।
0: तो लीस इस हिसाब से ये बहुत शानदार यानी कि खेल था, फाइनल था, और इसको लाखों लोगों ने बैठ के सारी दुनिया स्टेडियम में देखा, न्यू जर्सी स्टेडियम में। साथ ही साथ सारी दुनिया के अंदर जो है जो जहां इसके सॉकर के या फुटबॉल के शायकीन थे उन्होंने दिलो जान से मैच देखा। और इनको करोड़ों डॉलर जो है इनको 4.5 करोड़ डॉलर इनामी रकम मिली है स्पेन की टीम को, और जो है अर्जेंटीना को जो रनर अप रही वो उसको 3.5 करोड़ डॉलर के मिली इनामी रकम। लेकिन जो खास बात थी इसके अंदर वो इस टूर्नामेंट के अंदर शायद आपकी यकीनी तौर पे होगा, माना कि आपकी पसंदीदा टीम अर्जेंटीना थी अमृत जी, लेकिन ये कि मुझे ये यकीन हो गया था मोराको के गेम के बाद कि ये अगले मैच तो जीत जाएगी लेकिन शायद ये परफॉर्म नहीं कर सकेगी। इसका सारा क्रेडिट मैं समझता हूँ कि स्पेन की टीम को जाता है कि उन्होंने पहले मिनट से इस अंदाज में अपनी जो स्ट्रेटेजी

0: आई कि उनको पनपने नहीं दिया, और अगर उनको पनपने का मौका मिल जाता तो ये गेम जो है ना
1: बिल्कुल। और बिल्कुल सही बात आपने बोली कि अगर आप देखें पूरे मैच के अंदर बहुत ही कम ऐसे चांसेस रहे हैं जिसमें अर्जेंटीना को हमने देखा अटैक करते हुए, वरना वो डिफेंड ही करते रह गए, और उसका जो भारी मात्रा में जो फायदा उठाया वो स्पेन की टीम ने
0: उठाया।
1: कुछ फैक्ट्स मैं आपके साथ करना चाहूंगा कि स्पेन तो चैंपियन है ही है और अर्जेंटीना रनर्स अप रहा, लेकिन एक मैच हुआ जो थर्ड और फोर्थ प्लेस के लिए हुआ, उसके अंदर एक मैच के अंदर 10 गोल हुए जिसमें इंग्लैंड के 4 गोल कर पाया, 6 गोल करे और फ्रांस ने 4 गोल करे, तो बहुत ही बड़ा एक मैच था वो भी, और बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ गोल्स उसके अंदर देखे गए।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हुआ, ये कई मैचों का मजमुआ होता है 10 गोल किसी दो टीमों के दरमियान हो जाना
1: जी।
0: लेकिन कुछ हम और स्पेन के हवाले से बात करेंगे कि स्पेन ने एक दुनिया के अंदर रिकॉर्ड एक बनाया, वो ये है कि लगातार उन्होंने 38 मैचेस मुस्तकिल जीते हैं। रेगुलर बेसिस पे 38 मैच जीते, इससे पहले का जो रिकॉर्ड था वो 37 का था जो इटली ने जीत के बनाया था
1: जी।
0: इसी तरह से ये जो इनका स्पेन की जो मेंस टीम है इसने ये वर्ल्ड कप जीता, और एक ही साल के अंदर जो है इस वक्त वुमेन की चैंपियन भी जो स्पेन की टीम है और वर्ल्ड मेंस की चैंपियन भी जो है ना वो ये टीम है, तो ये बड़े अनोखी रिकॉर्ड है। और फिर दूसरा ये कि एक मैसी ने के मध्य मुकाबले के ऐसा नौजवान खेल रहा था जो कि इमिग्रेंट फैमिली का बच्चा था,
1: 19 साल का लड़का
0: यमाल के नाम से वो मशहूर है, वो बड़ी पिक्चर वायरल हुई कि वो मैसी की गोद में बैठा हुआ है या मैसी उसको खिला रहा है, और आज 19 साल 21 साल के बाद जो है ना वो बच्चा उसी के मध्य मुकाबले मैसी के सामने खेलता हुआ नजर आया, तो ये बड़ी तारीखी इस हिसाब से सबसे ज्यादा महंगा तरीन ये वर्ल्ड कप था, सबसे ज्यादा पैसा इस वर्ल्ड कप ने कमाया। लेकिन अब हम इस वर्ल्ड कप के साथ साथ हम अगले वर्ल्ड कप की जो 2030 में होने जा रहा है, अमृत जी थोड़ा उससे भी बात करें, वो भी बड़ा दिलचस्प होगा
1: जी।
0: जिस तरह ये तीन कॉन्टिनेंट के अंदर इन तीन मुल्कों ने मिलकर होस्ट किया, मैक्सिको, कैनेडा, अमरीका, तो अगला जो 2030 का वर्ल्ड कप होगा वो होगा मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल मिलके जो है ना उसको होस्ट करेंगे।
1: क्या बात।
0: लेकिन साथ ही साथ उसके इफ्तिताही जो तीन मैचेस होंगे वो यूरोगोए, पैरागोए और जो है अर्जेंटीना के अंदर होंगे, तो ये तीनों टीमें जो है ना, अर्जेंटीना तो जाहिर है रन अप रही है, लेकिन पैरागोए और यूरोगोए भी जो है ना ऑटोमेटिकली उस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, हालांकि इनके नंबर बड़े नीचे है क्वालिफाई करने के हवाले से, लेकिन ये जो अगला जो पैटर्न होगा, और वो पूरे 100 साल उसको वर्ल्ड कप को सॉकर के शुरू हुए 1930 में शुरू हुआ था, तो 2030 के अंदर होने जा रहा है, तो वो भी एक बड़ा अमेजिंग वर्ल्ड कप होगा। और एक और तजवीज दे रहे और है फीफा के जनाब, इस दफा तो 48 टीम थी, वो कहते हैं हम 64 टीम्स को जो है ना अगली दफा कोई प्लान करके लेकर आएंगे, तो जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है फीफा को भी बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ती है
1: जी,
0: और उसके लिए जाहिर है उनको नई एंट्रीज चाहिए, नई कंट्रीज चाहिए।
1: बट शकील साहब, कनाडा का जो इस समय प्रदर्शन था बहुत बढ़िया रहा,
0: इसमें कोई शक नहीं है कि कनाडा अमेरिका के हिसाब से ये मैच अमेरिका का 12वां नंबर रहा, कनाडा का 14वां नंबर रहा
1: जी,
0: लेकिन कनाडा की सॉकर के हिसाब से ये बहुत आलीशान मुकाम है कि कम से कम हमारी टीम जो है ना टॉप 15 के अंदर आई है, और आने वाले वक्त में हमारे पास और अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी आएंगे और इसकी जो है मकबूलियत बढ़ेगी कनाडा के अंदर, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले 2-4 वर्ल्ड कप के अंदर हम बहुत आखिरी राउंड तक पहुंचने वाली टीमों में शुमार होंगे।
1: बिल्कुल। और इस साल एडिडास गोल्डन बूट विनर जो है वो किलियन मबापे हैं, जो कि फ्रांस के प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्डन बूट अवार्ड जीता, और 16 साल के बाद स्पेन ने दोबारा से वर्ल्ड कप अपने नाम किया, और एक बहुत बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए उन्होंने अर्जेंटीना को हराया, और मैं यही कहना चाहूंगा कि वो डिजर्व करते थे। बिल्कुल साहब, जिस तरह से उन्होंने खेल दिखाया है और जिस तरह से उन्होंने अपनी गेम को बनाया और आगे बढ़ाया, वो डिजर्व करते थे।
0: और दूसरा एक और इसके अंदर एक बड़ा दिलचस्प जो मैच हुआ था वो इजिप्ट का और अर्जेंटीना का हुआ था, जो खासा कंट्रोवर्शियल रहा, गो के वो जीत गई अर्जेंटीना, लेकिन उसके बाद से वो जो सिंपैथी थी जो उसके अच्छे खेल की वजह से वो लूज कर गए।
1: बहुत भाई सही कहा।
0: और आखिर के अंदर जो फाइनल हुआ उसमें भी आपने देखा कि वो जो ना अपने आपे से उनके खिलाड़ी बाहर हो गए
1: थे। बिल्कुल। और वो रेकॉर्ड मिला एक, तो भारी हो गया था। जी।
0: और दूसरा ये कि जब मैच का इख्तिताम हो गया और वो फाते बन गए, तब भी जो है ना वो मीडिया पर्सन के साथ उनकी टीम के खिलाफ उलझते रहे, जो कि अगेंस्ट है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ, लेकिन ये इतनी बड़ी शिकस्त थी अर्जेंटीना के लिए کہ جس کو وہ کبھی نہیں بلا

0: साल हो गया गाना सुनती हूँ। बस कैलगरी च कार लैंड दी फीलिंग आई ले जायो। वीरे दी फैमिली ने भी टोरंटो तो कैलगरी मूव होने दा मन बना लिया है। उना दे आउण तो पहला मेनू कार चाहिदा है।
1: मेरी कल ही गल होई है रियल्टर जग्गी ते लोहरा नाल। जिन्ना दी सलाह नाल हुण कार एक नहीं दो लवांगे। पहला अपने लई ते दूजा तेरे वीरे लई। मैं सुनया जग्गी ढिल्लो पूरे प्रोफेशनल तरीके नाल समझांदे है।
0: जी हां, मैक्सवेल सेंट्रल रियलिटी नाल काम करदे जग्गी ढिल्लो नाल एक बार जरूर गलबात करो। जग्गी ढिल्लो दा फोन नंबर है 403-616-2445 403-616-2445।
2: जिंदरा मैड आ मेरा भतीजा, आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है।
3: ओ तू सारा टब्बर कट्ठा करी फिरदा है।
4: ओ पाजी ये असी नहीं, JFS इमिग्रेशन वाले ने कट्ठा करके दिता है। JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप, LMIA, परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स। कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004।
5: ओहो, आज फिर नहीं लोड मिलिया।
6: की होया?
5: बस पूछना, इंश्योरेंस कंफर्मेशन नहीं आई टाइम पे। ते हुन फिर एक दिन वेट करनी पैनी है। ते बच्चियां नु फिर नहीं मिल होना दो दिन।
6: ओहो, रह गए ना फिर पिछे। मैं सुनया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कंफर्मेशन।
7: द टाइम इज 9 PM।
8: You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.

0: रेडियो सरसंगम 94.7 एफएम सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वल्लों सत श्री अकाल जी। अज दिन सोमवार जुलाई महीने की 20 तारीख सन 2026 हुण तो लैके 10 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा। जितेंद्र पन्नू जी नाल यह प्रोग्राम पेश किया जाता है जी। इस प्रोग्राम में बहुत सारे मुद्दों पर विस्तार नाल चर्चा की जाती है। ये प्रोग्राम भी शुरू करते हैं कुछ पलों के, लेकिन उस तो पहला थोड़ी जी मौसम की गल कर लीए, झात मार लीए। इस वेले 18 या 19 डिग्री सैलसीयस के आस पास टैंपरेचर है। गर्मियां अपने जोबन ते इस वेले पूरे कनेडा दे विच, कल 24 डिग्री सैलसीयस ते 16 हल्का फुल्की बारिश का इमकान दस्या गया। उस तो अगले दिन बुधवार ते वीरवार गर्मा गर्म मौसम 28 से 30 डिग्री सैलसीयस टैंपरेचर रहेगा ते हल्की फुल्की बदलवाई ते धुप दा इस तरह का मिक्स जा खेड बनिया रहेगा। रेडियो सरसंगम 94.7 एफएम ते जी इस प्रोग्राम दे विच सानू सहयोग दे रहे हैं सोनिक इंश्योरेंस ते मानस पहुजा। अल्बर्टा विच ट्रकां दी इंश्योरेंस ते बेस्ट रेट लैण लई 587-832-1208 ते संपर्क कर लो 5878321208। वाईवाईसी होम केयर तो वीरपाल कौर राठौरा की कंपनी ये जो घर विच बजुर्गों की सांभ संभाल का काम करती है अपनी लैंग्वेज दे विच सेवावां देणगे ते बिल भी सरकार नूं भेजणगे। वीरपाल कौर होना का फोन 825-760-0983 8257600983। ओएसएस स्माइल मैडिकल एक क्लीनिक है जी सनरिज एरिया दे विच, जिथे कि किसी अपॉइंटमेंट की लोड़ नहीं है। फोन 587-617-4496 5876174696 ओएसएस स्माइल मैडिकल। मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स कैनेडा की सब तो वड्डी डीलरशिप है ते कंट्री हिल्स के उपर है। गौरव शर्मा होरां नाल संपर्क करके वधिया डील भी तुसी बनवा सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिद्धू ते लवप्रीत सिद्धू जो लाइफ इंश्योरेंस ते सुपरविजा इंश्योरेंस करते हैं। फोन नंबर है 403-404-3500 403-404-3500। मदर इंडिया रेस्टोरेंट देसी घ्यो विच बनिया दालां सब्जियां, नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन है मदर इंडिया रेस्टोरेंट ते 24 घंटे 7 दिन खुलता है। ब्रेकफास्ट बफे विच सवेरे तो 10 बजे तो शाम 4 बजे तक इंजॉय कर सकते हो। 40 तो बाद आइटमा 40 मेहमानों लिए सिटिंग का अरेजमेंट, प्राइवेट डाइनिंग अवेलेबल है। 24 घंटे खुलता है सिटीस्केप लैंडिंग मदर इंडिया नॉर्थ एंड साउथ इंडियन कुजीन। रेडियो सरसंगम 94.7 एफएम ते स्वागत है जी। आप साहब सुनने वाले एक बार फिर ते हाजिर ने पंजाब तो जितेंद्र पन्नू जी भी। पन्नू साहब स्वागत, सत श्री अकाल जी।
1: शुक्रिया कुलदीप जी, सत श्री अकाल।
0: पन्नू साहब शुरुआत प्रोग्राम दी करदे आ के मानसून सैशन

0: वे जिंदरा मैल आ मेरा भतीजा आ मेरी भैन दी कुड़ी ते आ मेरी भुआ दी ननान दी कुड़ी है
1: ओ तू सारा टब्बर इकट्ठा करी फिरदा
2: ओ पाजी ये असी नहीं JFS इमिग्रेशन वाले ने इकट्ठा करके दिता है JFS इमिग्रेशन फॉर स्टडी परमिट वर्क परमिट स्पॉन्सरशिप LMIA परमानेंट रेजिडेंसी या रिफ्यूजी एंड अपील्स कॉल 403-436-6000 और 403-406-2004
3: हाई क्वालिटी वालियां फोटो चाहिदियां ने तां फिर पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा कर लो किसी भी उम्र दियां दो पासपोर्ट फोटो सिर्फ $7 विच तुहाडे कारोबार जां सोशल मीडिया प्रोफाइल लई प्रोफेशनल हेडशॉट सुंदर फैमिली फोटो जो सदा लई यादगार बन जावे साडे तजर्बेकार फोटोग्राफर लेटेस्ट इक्विपमेंट वरतदे हन तां जो तुहाडियां फोटोआं बिल्कुल परफेक्ट आउण ए सब कुछ बिल्कुल वाजिब प्राइस ते पासपोर्ट तो लेके हेडशॉट अते परिवारिक पोर्ट्रेट तक असी सब कुछ करदे हां पिक्सल फोटो स्टूडियो ते भरोसा करो तुहाडी फोटोग्राफी दी हर लोड लई कॉल करो 403-947-0060 403-947-0060 जां आओ यूनिट 530-669 सवाना बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी पिक्सल फोटो स्टूडियो जिंदगी दे पलां नूं कैद करदे होए इक फोटो इक वार
4: The time is 6 p.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.